0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ουγγελίες για πάντα σαν πάρση δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα αρχανά από σαν πάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ ο χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ. Μάρα με ζει μόχο κορτά national ο μάλτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλεύε χάρ βάχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέ δι. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने বলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব স্যার অর্ডার তে মেলা বেশি।

0: Haji, it's your it's me, full AP Alungur. Advance welcome and salam to you, great sir ji. And here, Leli Nazir, sir, Raz sir ko bhi salam. Nazir sir, Raz sir ko bhi salam. Achha ji, kha. Aur next, bhai ji, salam, show good hai, Leli Hero se keh dena. Main maroor nahi hoon, please, maroor mat kehna. Mujhe bura lagta hai. Achha ji. आप लोग जो मुझे गए वो उसमें वो क्या बात है प्यार
1: मार्केट के जोरिए दाए रिजल्ट मा जोरिए दाए
0: हां जी नेक्स्ट वाई ची अगेन फॉर हैप्पी अलुंगर दिस इज फॉर लेली हेयर सियोर अभी छोड़ दिया हमने भी लोगों के पीछे चलना जिसको जितना भी मोहब्बत दे उसने उतना ही गिरा हुआ समझा बात तो वैसी सही है अच्छा हां

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेऔलादी बवासीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़ी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पिट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है सूखची डीचमिस बीचमिस अरचिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबित उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

शिव जहान मन तेवर सतवला बी दिशांक नहीं शिव जहान मन नस रिफत हमारे को रिफत में आवाज़ जो जोत कमजोर है दास इलाज पर जोर खबर है तो सो के شامل کی السلام علیکم

0: हाय हाय,
1: ईश्वर
0: ढेर जबरदस्त ढेर जबरदस्त. इंशाल्लाह कोशिश करता कैसे देता प्ले का सही दो
1: बस कमला उधर कर देता मनाना बीजी
0: ढेर मनाना रह जाता सालुमी ना होना के
1: शगर वजीर का बाकी टूल गोल गोला उधर दोनों के सलाम पे राम परवाना खुश है बेदे ज़िंदगी दे
0: ढेर मनाना जी खुश होला बुद बरियाला ये दे घोड़ा यो जहान मनाना जंग वाले.